0: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
1: The people of Britain have bought loads of noise cancelling headphones. With a Barclaycard Rewards credit card, you could get cash back on eligible purchases and no fees on spending overseas. What you buy is your business. Rewarding you is ours. Subject to financial status, T's and C's apply. Check if you're eligible.

0: House.
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: available at all Quality Foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।

वनीता मिश्रा, गुरप्रीत कौर, गौरी बापट ऑन द वोकल्स। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। गुड मॉर्निंग।

0: लकड़ी की काठी फ्रॉम द ओरिजिनल मासूम शेखर कपूर डायरेक्टोरियल डेब्यू is rolling out a sequel after so many years. Shabana Azmi and Nasiruddin Shah making a comeback in the sequel, by the way.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
0: Seher Beg dares to dream beyond limits, but destiny ties her to Mahid Niazi, a man she never chose. In a world of rules, control and judgment, will her dream survive? Watch Seher Hone Ko Hai Monday to Friday, 9:25 PM, only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर फर्स्ट प्ले ऑन दिस शो टेकन फ्रॉम कंगना रनौत्स अपकमिंग फिल्म बाय द साउंड ऑफ इट इट इज अ पेट्रियोटिक फिल्म भारत भाग्य विधाता दोज ऑफ अस हू ग्रोन अप इन इंडिया ग्रोन अप सिंगिंग इंडियाज नेशनल एंथम एवरी सिंगल मॉर्निंग इन स्कूल जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता इट इज अ लाइन फ्रॉम इंडियाज नेशनल एंथम दिस सॉन्ग हाउएवर इन श्रेया घोषाल्स वॉइस नब्ज नब्ज ऑन सनराइज

0: जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? करण अर्जुन इज द फिल्म।
1: वो क्यों भला
0: सानवी, सानवी यू गॉट इट राइट, आई मिस योर नेम। Please say my name as I leave the UK tomorrow. There you are, my friend, driving from Glasgow to Oxford.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।